0: यकीन, चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: A verdict can change a business. A law can reshape an industry. A regulation can create

0: an opportunity or a risk? Because what happens in courts could have a direct impact on your business. Join me as I decode what legal decisions mean for markets, businesses, and investors. Closing Argument, only on NTD Profit.
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening? How?
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
1: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
0: अ वर्डिक्ट कैन चेंज अ बिजनेस, अ लॉ कैन रीशेप एन इंडस्ट्री, अ रेगुलेशन कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी और अ रिस्क, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इन कोर्ट्स कुड हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस। जॉइन मी एज आई डीकोड व्हाट लीगल डिसीजंस मीन फॉर मार्केट्स, बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट, only on NTD Profit.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: will not far to go out, whatever, to explore. And I think that if even he was working alone or with a group, the death penalty is waiting for him.
1: My colleague Mohammed Ghazali has been tracking all the finer developments for us. He joins us live from Abu Dhabi this morning. Ghazali, Channel 12 is reporting that Al-Hamami told interrogators that he acted in revenge for Gaza and wanted to die as a martyr. Separately, you're also picking up on the fact that a Mossad official has reportedly told Israeli ministers that investigators are examining Hamami's earlier visits to several countries considered hostile to Israel.
2: Yeah, coming to the second point, obviously he's an Emirati born, having Omani origin. Hamami, the co-pilot in that particular flight, he comes from Oman, or he's born here, brought up here in UAE. So he must have traveled to other Gulf countries. Most of the Gulf countries don't have diplomatic relations with Israel. So obviously that trip would be seen by Israel as a visit by the co-pilot to the hostile countries or hostile Arab countries in the Gulf region. That is no surprise. But the second point, that he wanted to die as a martyr, or he wanted to take revenge for Gaza, is something which has must have come as a surprise for many who have joined the investigation, be it the UAE authorities or the Israeli authorities, because this person had flown into Israel multiple times in the past. Despite his visit to the other Arab countries, the most surprising fact is that despite having an origin from Oman or a country which doesn't have diplomatic relations with Israel, how Hamami managed to visit Israel multiple times in the past, and whether he wanted to crash the plane or he wanted to execute the same kind of terror attack in the past as well. The authorities have also interrogated the other crew members who were on board on that particular flight. And they, as per the passengers were suspecting that perhaps there could be involvement of other crew members in tandem with Hamami. But even that has been clarified now by the Israeli agencies, that after the interrogation of the other crew members on the flight, it was found that they had no engagement or involvement with Hamami in that particular flight where he was attempting to crash it into the Saudi Arabian region when it started plunging there. But there was a plan B, as per the security agencies, that he wanted to crash it into one of the US bases in Jordan. That also hints that despite Israel, US presence in the Middle East, it hasn't come as a security guarantee for the Gulf countries, but rather it is turning out to be more risky for them to house all those US security bases in the region.
1: Ghazali, as always, thanks so much for breaking down the latest developments for us. Do stay on with us as we delve deeper into the investigation and its findings for a moment here. Well, the investigation into the attempted hijacking of the Fly Dubai flight is now pointing to what investigators believe were two possible targets. According to Israeli media reports citing officials familiar with the investigation, Hamam al-Hamami allegedly intended to crash the aircraft into Ben Gurion Airport. And investigators believe he may have had a contingency plan as well. If he could not reach Israel, he would allegedly target a US military base in Jordan. These are reported findings from an ongoing investigation, and investigators are examining whether the attack was planned before Al-Hamami joined Fly Dubai, whether he deliberately sought employment with an airline flying to Tel Aviv, and what he may have learned during previous visits to Israel. But the immediate question for us now is, how much of this alleged planning can be corroborated through flight data, through travel records, through communication, through eyewitness statements, his own statements to investigators, and crucially, whether anyone else knew about or assisted in this planning? Let's go back to Ghazali, who's been tracking all the finer developments. Ghazali, are investigators now looking at whether there were failures in information sharing between Oman, the UAE, and Israel, rather than simply asking how one individual managed to carry out the cockpit attack?
2: Yeah, both questions, as you rightly pointed out in your opening statement, that how he managed to get radicalized, but before that, how he managed to pay several visits to Israel, despite the fact that he comes from Oman or his origin is something which was a big, big red flag for any flight in entering into the Israeli territory. The second point, that whether he had a plan B of targeting a US base in Jordan, then why did he enter into the Saudi airbase? Saudi airspace is also a red flag for the Saudi authorities, if he had any grudge with Israel, and perhaps so, because Jordan is a very close and a very old ally of Israel in the Middle East. It is one of the first countries to have brokered peace with Israel. And that rightly suggests so that perhaps he had...
1: I apologize, I'm interrupting you. Stepping up the campaign on the vote theft and removal of Gyanesh Kumar, members of the India bloc will be holding a march today Ahead of that march at 10:30 a.m., the BJP is addressing a press conference. Listen in.
3: Election Commission में क्या हो रहा है? पूरा विषय जो Supreme Court में चल रहा है, वो क्या हो रहा है? कुछ दिनों से Special Intensive Revision (SIR) को लेकर भ्रांतियाँ और फेक न्यूज़ फैलाया गया है. Supreme Court में कल आपने देखा कि Election Commission of India को लेकर एक याचिका, एक पेटिशन दाखिल किया गया था. और उस याचिका का मुख्य डिमांड था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, दैट ही शुड बी रिमूव्ड. कल नोटिस जारी हुई है, वो एक प्रक्रिया है कि दोनों पक्ष रहेंगे और उस पर सुनवाई होगी. मुख्य विषय कल से जो चल रहा है वो यह है कि मुख्य चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन या परिवर्तन किया है जो कि गैर कानूनी है, और इसलिए मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ एक अभियान चलाना है और उन्हें हटाना है. इस पूरे विषय को मैं आज समझाने वाला कल, और क्यों समझाने वाला हूं यह भी बता रहा. कल दोपहर बाद राहुल गांधी जी ने जब कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और नोटिस इश्यू किया, तो राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था. राहुल गांधी जी ने एक्स में कुछ कहा था. राहुल गांधी जी ने एक्स में क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने एक्स में कहा था, नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट दैट ज्ञानेश कुमार चेंज्ड फॉर्म 6 इलीगली एंड यूनिलैटरली. दिस इज जस्ट वन मोर प्रूफ ऑफ हिम abusing his position to help the BJP. He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. ये राहुल गांधी जी ने कल ट्वीट किया था, और उसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के 26 सितंबर 2026 के इस प्रेस स्टेटमेंट को लगाया था. मैं इसमें आज आपके सामने एक एक करके राहुल गांधी की जो झूठ के पुलिंदे हैं उनको खोलूंगा. इस पूरे एक्स के पोस्ट में, इस ट्वीट में राहुल गांधी ने 4 भ्रामक शब्दों का, 4 फेक शब्दों का प्रयोग किया है. पहला, फॉर्म 6 हैज बीन चेंज्ड इलीगली. दूसरा, फॉर्म 6 चेंज्ड यूनिलैटरली. तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू हेल्प द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी. और चौथा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज क्रिमिनल असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी. क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष अर्थात राहुल गांधी कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी की सहायता की है इलेक्शन जीतने में, और हम एक स्टेक होल्डर हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाएगी कि किस प्रकार से जनता से हम जीत कर आए हैं और किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं. पहला है, इस पूरे विषय में आप यह भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक किया है, वह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं. इलेक्शन कमीशन ने भी इसको डिबंक किया है. मगर ये पूरा फॉर्म 6 का विषय कल से क्यों उठा है? कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो CJI जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की. वो टिप्पणी क्या थी फॉर्म 6 को लेकर, मैं पढ़ रहा हूं. वो टिप्पणी थी, एनी मॉडिफाइड फॉर्म 6 हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय अस. लेट्स बी क्लियर, व्हेन द रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड वी वुड लाइक टू सी हु हैज मॉडिफाइड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था. जब रिकॉर्ड में विषय आएगा तो हम देखेंगे कि क्या फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन हुआ. जिस प्रकार याचिका में था कि फॉर्म 6 इलीगल है, फॉर्म 6 को हटा दिया जाए, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया. अब है राहुल गांधी जी का झूठ नंबर 1. झूठ नंबर 1 है फॉर्म सिक्स को लेकर कि फॉर्म सिक्स इलीगल है, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार की सुनवाई हुई और 26 सितंबर 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना प्रेस स्टेटमेंट नंबर 120 जारी किया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो फॉर्म सिक्स में मॉडिफिकेशन हुआ था उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का समर्थन प्राप्त था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट मॉडिफिकेशन। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उस पोर्शन को रेड में मार्क किया है, पॉइंट थ्री को, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो कि झूठ है। मगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैंने पढ़ा, और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा वो मैं पढ़ देता हूं, जिसको राहुल गांधी ने अंडरलाइन किया है। द डिक्लेरेशन अटैच टू फॉर्म सिक्स फॉर SIR हैज बीन अपहेल्ड बाई द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर नॉन SIR पीरियड द फॉर्म्स एप्लीकेबल एज पर रूल्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 विल बी यूज्ड। द डिक्लेरेशन अटैच टू फॉर्म सिक्स फॉर SIR हैज बीन अपहेल्ड। फॉर्म सिक्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, एक डिक्लेरेशन अटैच्ड हुआ है उस फॉर्म सिक्स के साथ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने इस डिक्लेरेशन को लेकर, इस अटैचमेंट को लेकर क्या कहा है, उस विषय में ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी मैं लेके आया हूं, वो पढ़ के सुनाऊंगा। ये 124 का जजमेंट है जो 27 मई 2026 को SIR के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तो उसमें फॉर्म सिक्स के विषय में क्या कहा था और उसके साथ अटैच्ड डिक्लेरेशन के लिए क्या कहा था, मैं तीन जगह मार्किंग करके लाया हूं। उन तीन पन्नों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा वाक्यों को पढ़ता हूं। पहला पेज नंबर 110, पेज नंबर 57 आते हैं, फर्स्ट पेज 57, पेज नंबर 57 में क्या लिखा है आप देख सकते हैं, उसमें एक एफ क्लॉज है, एनी न्यू वोटर वॉज रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म सिक्स अलोंग विथ अ डिक्लेरेशन फॉर्म इन एनेक्सर डी ऑफ द इंप्यूज्ड ऑर्डर। कोई भी नया वोटर फॉर्म सिक्स के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देगा जो कि एनेक्सर डी में है। और ये ऑर्डर के किस अंतर्गत आता है, E1.1.2 स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकॉर्डिंग रीजंस। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकॉर्डिंग रीजंस में पॉइंट एफ पे स्पष्ट रूप से पेज नंबर 57 में ये कहा गया है। अब हम आते हैं पेज नंबर 110, पेज नंबर 110, पैराग्राफ नंबर 152, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये पैराग्राफ देख लीजिए, ये पैराग्राफ नंबर 152 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है, इट इज ट्रू दैट फॉर्म सिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 सेट्स आउट अ फ्रेमवर्क ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हाउएवर द सेम इज टेलर्ड टू द प्रोसेस ऑफ रिविजन contemplated under section 21(2) of the RP Act and may not in all situations be capable of literally application to an exercise of the present nature. The Commission therefore retains a degree of residual authority to formulate an appropriate documentation framework suited to the exigencies of a SIR. जो अभी SIR चल रहा है उसके लिए ये फॉर्म सिक्स पर्याप्त नहीं हो सकता है सारे डाटा के लिए, इसलिए लिमिटेड पावर है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो उसमें कुछ एक्सीजेंसीज ऐड करे। द फॉर्मुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रजीम मस्ट दस रिफ्लेक्ट कैलिब्रेटेड बैलेंस इन ड्रॉइंग फ्रॉम द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क वाइल अडेप्टिंग इट वेयर नेसेसरी टू इफेक्टिवली सर्व द पर्पस ऑफ एंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए अगर ऐसे एडिशन की आवश्यकता पड़े तो अपने लिमिटेड पावर के अंदर ये इलेक्शन कमीशन कर सकती है, तो यह सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर 152 में कहा है। अब आते हैं आखिरी पन्ना 110, 124 के 110वें पन्ने पर, पैराग्राफ नंबर 161। सुप्रीम कोर्ट कहती है, अकॉर्डिंगली, सब कुछ सुनवाई करने के बाद, अकॉर्डिंगली We hold that the documentation regime prescribed by the Commission represents a considered exercise of its administrative discretion in furtherance of its constitutional mandate. The classification of documents, including the exclusion of certain categories, is based on intelligible criteria having a direct nexus with the objective of ensuring the integrity of the electoral roll. We are therefore unable to hold that the impugned documentation framework is arbitrary or violative of the statutory scheme. Supreme Court कहती है ये जो documentation format commission ने दिया है हम इससे कोई आपत्ति नहीं रखते हैं और हमें ये arbitrary या इस पे किसी प्रकार का violation violative nature नहीं दिखता है। कहीं भी फॉर्म 6 को मॉडिफाई नहीं किया गया है, एक अटैचमेंट उसमें अटैच किया गया है जिसके विषय में मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 पैराग्राफ को पढ़ के सुनाया। अभी नोटिस गया है, सुनवाई भी नहीं हुई है, सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और झूठ और फरेब का माहौल, भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का झूठ नंबर दो है, उन्होंने एक तो कहा फॉर्म 6 इलीगल है, दूसरा उन्होंने कहा इसमें यूनानिमिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने एक साथ निर्णय नहीं लिया, तीनों कमिश्नर एक पेज पे नहीं थे। झूठ, राहुल गांधी झूठे हैं, क्योंकि 26 सितंबर 2026 को जो अपना 120वां प्रेस स्टेटमेंट था उसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा, दी ऑर्डर फॉर SIR इन बिहार इश्यूड ऑन 24 जून 2025 वॉज इश्यूड विद द यूनानिमस अप्रूवल ऑफ द कमीशन। दिस ऑर्डर हैज बीन अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जजमेंट डेटेड 27 मई 2026। आप सब जानते हैं कि बहुत स्पष्टता के साथ एक प्रेस स्टेटमेंट आया था, जिस प्रेस स्टेटमेंट में तीनों इलेक्शन कमिश्नर एक साथ बैठे थे। वो फोटो भी आपके सामने मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर वहां एक साथ बैठे थे और उसके बाद उन्होंने जारी किया ये प्रेस स्टेटमेंट। ये है, तीनों कमिश्नर एक साथ बैठे और उसके बाद उन्होंने जारी किया है कि यूनानिमसली डिसीजन हुआ है, सबके हस्ताक्षर है। तो यहां राहुल गांधी दूसरा झूठ, दूसरी बार उन्होंने यहां भ्रम फैलाने की कोशिश की है। उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी जी का झूठ नंबर तीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू हेल्प बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन हेल्प कर रही है। ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट 19 फरवरी 2025 को हुआ, तीनों लोकसभा के इलेक्शन 14, 19 और 24 का इलेक्शन, अनेक राज्य और अनेक यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन उससे पहले हो चुके थे। यह सूची भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके समक्ष रखा है। तो यह कहना कि इलेक्शन कमीशन के कारण हम लोकसभा के चुनाव जीते हैं ज्ञानेश जी के कारण, यह सरासर गलत है, क्योंकि उनकी नियुक्ति 19 फरवरी 2025 को हुई है। इसी को मानते हुए जो राहुल जी ने कहा है, मैं राहुल जी से एक सवाल पूछता हूं। 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ उस समय वीएस संपत जी इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, क्या वीएस संपत जिनका अपॉइंटमेंट 11 जून 2012 को हुआ था और जो जनवरी 15, 2015 तक रहे कार्यरत, क्या उन्होंने, जिनका अपॉइंटमेंट यूपीए ने किया था, सोनिया जी ने किया था, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की और क्या उनके मदद से भारतीय जनता पार्टी जीती? इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी दे। हमारी मदद ज्ञानेश जी नहीं कर रहे हैं, हमारी मदद गणेश जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मदद ज्ञानेश जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मदद गणेश जी कर रहे हैं। बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक के देवता गणेश जी। भारत के जनता के पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है और वो जानते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो लोग कैप्टन स्मिथ के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर सकते हैं, उनको वोट नहीं देना है। वोट देना है तो उसको देना है जिसने कहा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहे। और राहुल गांधी का झूठ नंबर 4, क्रिमिनल असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। हमने क्रिमिनल असॉल्ट कर दिया है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। मैं दो चीजें इसमें दिखाना चाहूंगा। यह एक लिस्ट है, केवीके सुंदरम 1958 से 1967 तक ये इलेक्शन कमिश्नर रहे कांग्रेस के समय, बाद में इनको चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन बनाया गया, पद्म विभूषण दिया गया। क्या यह असॉल्ट था, क्रिमिनल असॉल्ट? नागेंद्र सिंह 1972 से 73 तक इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको कांग्रेस ने पद्म विभूषण दिया। क्या यह भारत के लोकतंत्र पर क्रिमिनल असॉल्ट था? आर के त्रिवेदी 1982 से 85 तक इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको पद्म भूषण दिया गया, बाद में कांग्रेस ने उन्हें गवर्नर बनाया। क्या ये क्रिमिनल असॉल्ट था इंडिया के डेमोक्रेसी पर? वी एस रमा देवी जी 1990 में इलेक्शन कमिश्नर थी, उनको गवर्नर बनाया कांग्रेस ने, क्या यह क्रिमिनल असॉल्ट था भारत के डेमोक्रेसी पे? टी एन सेशन 1990 से 1996 तक इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 96 में 1996 में इलेक्शन लड़ा, क्या ये क्रिमिनल असॉल्ट था? एम एस गिल 1996 से 2001 तक इलेक्शन कमिश्नर रहे, वो राज्यसभा के मेंबर बने, बाद में मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर बने, क्या यह क्रिमिनल असॉल्ट था? जे एम लिंगदो 2001 से 2004 तक यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे और बाद में कांग्रेस ज्वाइन किए, क्या यह क्रिमिनल असॉल्ट था? एन गोपाल स्वामी जो 2006 से 2009 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्हें पद्म भूषण दिया गया, क्या वो क्रिमिनल असॉल्ट था? या जिस प्रकार नवीन चावला जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोनिया गांधी जी ने बनाया, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ उन्हीं के सरकार में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मैडम प्रेसिडेंट को प्रतिभा पाटिल जी को उनके खिलाफ लिखा था कि इस व्यक्ति का, नवीन चावला जी का, कांग्रेस के प्रति बायस है, जब ये वॉशरूम जाते हैं तो कांग्रेस को फोन करके सारा विषय बता देते हैं, उसके बावजूद भी उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोनिया गांधी जी ने बताया, वो क्रिमिनल असॉल्ट था। अंत में ईवीएम के ऊपर हमला किया है कांग्रेस के अध्यक्ष ने कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। 61A ये एक्ट कौन लेके आया था और ईवीएम देश में किसने इंट्रोड्यूस किया था? राजीव गांधी 61A लेके आए थे। राजीव गांधी जी ने 1989 में इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ईवीएम को देश में इंट्रोड्यूस किया था और 2004 में पहली बार ईवीएम द्वारा चुनाव कराया गया। क्या आज मार्च के दौरान राहुल गांधी राजीव गांधी डाउन डाउन का नारा लगाएंगे? और बैलॉट से, जहां तक बैलॉट पेपर का सवाल है, आप बैलॉट से चुनाव चाहते हैं? अभी अभी जब मैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, त्रिपुरा में विलेज कमिटी इलेक्शंस के नतीजे घोषित हुए हैं, अभी घोषित हुए हैं, बैलॉट पेपर पे चुनाव हुआ है, 4,597 सीट्स पे चुनाव हुआ है। नतीजे, एनडीए 4,320 आउट ऑफ 4,597 विलेज कमिटी, कांग्रेस 14 आउट ऑफ 4,597 विलेज कमिटी बैलॉट पेपर पे। राहुल जी बैलॉट पेपर पे केवल 14 जीते हैं 5,000 में से। ये औकात है कांग्रेस पार्टी की, जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। आखिर में मैं 10 सवाल आज राहुल गांधी जी से पूछता हूं और आशा करता हूं कि 10 सवाल का जवाब राहुल गांधी जी दे। एसआईआर का विरोध करते समय कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि जो 2.8 करोड़ मृतकों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, क्या उनको नहीं हटाया जाता? क्या मृतकों का नाम इसी प्रकार से सूची में रहने दिया जाता? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट चोरी से सांसद बने हैं? वो खुद भी तो सांसद है। अगर हम वोट चोरी से सांसद बने हैं तो क्या वोट चोरी से वो भी सांसद बने हैं? क्या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल की सरकार वोट चोरी से बनी है? क्या 1952 से 1914 तक 12 एसआईआर हुए, क्या यह 12 एसआईआर के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी वो अवैध सरकार थी? पांचवा सवाल, 6.8 लाख विपक्षी बूथ, जो विपक्षी बूथ लेवल के बीएलए थे, ये बीएलए ये कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे थे कि नाम डिलीट हो गया, हमें ये नाम ऐड करना है? इनके बीएलए क्या कर रहे थे? इनके बीएलए काम ना करे तो क्या हमारे बीएलए इनके लिए काम करे? छठा सवाल, 1993 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चयन केवल और केवल एक व्यक्ति करता था, उस समय के सरकार के प्रधानमंत्री, मतलब आप अपना पपेट बैठाते थे इलेक्शन कमीशन पे? इसका जवाब भी राहुल गांधी दे। विपक्ष जीते, खुद जीते तो निर्वाचन आयोग ठीक है, और हार जाए तो निर्वाचन आयोग हाय हाय और लोकतंत्र हाय हाय। क्या चुनावों का विरोध करके कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान में अराजकता फैलाने की प्रयास नहीं कर रही है? आज जो कर रही है कांग्रेस पार्टी, अराजकता और अनार्की फैलाने की कोशिश नहीं कर रही है क्या? नवा सवाल है, सही तरीके से राहुल जी अपने आत्मा पे, अपने हृदय पे हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या अराजकता फैला करके ये आपके रीलॉन्चिंग का प्रयास नहीं है क्या? खाट यात्रा, दो अच्छे लड़के, साइकिल यात्रा, ये सब फेल होने के बाद क्या आप अपनी रीलॉन्चिंग की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और मैं अंतिम सवाल से अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करूंगा। अंतिम सवाल है कि राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए थे, राजीव गांधी के खिलाफ हाय हाय के नारे आज लगेगा या नहीं लगेगा? इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी दे। मैं आखिरी में एक विषय आपको कहना चाहता हूं, ये जो बार बार लोगों को चिपकाने की कोशिश की गई है कि 13 करोड़ लोगों का नाम डिलीट करने की कोशिश एसआईआर में किया गया है। अभी मेरे को दिखाया गया है कि बीजेपी बैक्ड कैंडिडेट्स विन इन 11 हिमाचल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, अभी अभी हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो चुनाव होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव मैंने आपको त्रिपुरा का बताया, ये बैलेट पेपर पे होते हैं। अभी देखिए, बीजेपी बैक्ड कैंडिडेट्स विन इन 11 हिमाचल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये किस प्रकार हुआ? बैलेट पेपर से ही हुए ना। और अभी आपको त्रिपुरा का भी उदाहरण दिया था, मगर अंत में इसको ध्यान से सुन लिया जाए। यह एक कोशिश की जा रही है देश में भ्रम फैलाने की, 13 करोड़ लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, इसको चिपकाने की कोशिश की जा रही है। जब मतदाता पत्र का शुद्धिकरण होता है और उसमें 2.8 करोड़ लोगों को मृत पाया जाता है, तो क्या मृत लोगों का नाम लिस्ट में होना चाहिए क्या? इसका जवाब दे कांग्रेस पार्टी। 3 करोड़ लोग अनुपस्थित हैं, जब बीएलओ जाते हैं तो वहां पर 3 करोड़ लोग अनुपस्थित है, क्या अनुपस्थित लोगों का नाम सूची में चढ़ना चाहिए क्या? क्या छापा वोट, बचपन में जितने आप बैठे हैं और हम बैठे हैं, लगभग हम उम्र हैं, आप थोड़े यंग हैं, बचपन में हमने देखा है बूथ रिगिंग क्या होता था, लठ लेकर किस प्रकार से मार करके एक व्यक्ति जाके सब बटन दबाता था या बैलेट डालता था। छापा वोट बंगाल में क्या होता था ये हमने देखा है। आज छापा वोट नहीं है, आज लाठी के बल पर कोई बूथ में जाकर बैलेट पेपर नहीं डाल सकता है, मृत आदमी के नाम पर आप और मैं जाकर वोट नहीं कर सकते हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए शुद्धिकरण? 6.3 करोड़ लोग स्थायी रूप से स्थान बदल चुके हैं, मतदाता हैं।

0: एक हमारी बहन है, वो शादी करके बिहार से यूपी जाती है, तो क्या उसका नाम बिहार से यूपी शिफ्ट नहीं होना चाहिए? क्या क्यों नहीं होना चाहिए? उसका अधिकार जहां है, अब वो अपने पति के घर गई है, वहां से वोट करेगी, उसका अधिकार वहां गया है। पहले आधार कार्ड में पिता का नाम था, अब पति का नाम है, आप उसमें कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ नाम डुप्लीकेट था, यहां भी मैं वोट दे रहा था, बिहार में भी वोट दे रहा था, अब वो 1 करोड़ नाम शुद्धिकरण कर दिया गया है, 2 राज्यों में आप वोट नहीं दे सकते हैं। क्या यह चीज सही है या नहीं है? शुद्धिकरण हो रहा है भारत के लोकतंत्र का। जो लोग शुद्धिकरण नहीं चाहते हैं वो मार्च करेंगे, जो लोग शुद्धिकरण चाहते हैं वो सही तरीके से वोट करेंगे और सही सरकार चुनेंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, ये जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका एक ही ध्येय है। अब इन्होंने अनुभव किया है कि शायद ये सत्ता में कभी नहीं आएंगे। बंगाल तक इनका आस बंधा हुआ था कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, हम बंगाल जीत जाएंगे। बंगाल में जिस प्रकार से लोगों ने पटखनी दी है कि भैया तुष्टिकरण नहीं चलेगा, भैया ये जो आपकी टोलाबाजी है, एक्सटॉर्शन है, ये नहीं चलेगा, अब हमें विकास चाहिए, उसके बाद से इनका मनोबल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब ये जान चुके हैं कि राहुल गांधी जी सरकार में नहीं आने वाले हैं, और जब इनको पता चल गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में नहीं आने वाले हैं, जिसको कहते हैं ना, खीर मैं नहीं खा पाऊंगा तो मैं खीर खिंडा दूंगा, मुझे खीर नहीं मिलेगी तो मैं खिंडा दूंगा, कोई नहीं खा पाए। अगर लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार पे नहीं आ पाएंगे तो गैर लोकतांत्रिक तरीके से हम एक साधारण व्यक्ति को जो चुन के आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है उसे भी रहने नहीं देंगे। हम देश में ऐसा माहौल बनाएंगे, कौन चाहता है देश आगे बढ़े? देश की जनता चाहती है देश आगे बढ़े, विपक्षी दल नहीं चाहते देश आगे बढ़े, और कई ऐसे देश होंगे भारत से बाहर जो नहीं चाहते होंगे कि भारतवर्ष आगे बढ़े। बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा होगा देश के बाहर, देश को अटकाने की, देश को भटकाने की, देश की नीतियों को लटकाने की। बहुत सारे विपक्षी पार्टी उसमें एकजुट हो गए होंगे विपक्षी ताकतों के साथ। इस षड्यंत्र में एक भी व्यक्ति शामिल ना हो बुद्धिमता के साथ। मैंने कहा ना, गणेश हमारे साथ है, बुद्धि विवेक, देश के लिए क्या ठीक है ये आप अपने मन में सोचिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनकी नीतियों के साथ पत्थर की तरह खड़े हो जाइए, क्योंकि देश नहीं झुकने देना है, देश को आगे बढ़ाना है।
1: एक छोटा सा सवाल, अगर कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई इस पूरे मसले पर, ऐसा याद आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एआईएल और एक नोटिस जारी किया जाए, तो जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की और राहुल गांधी ने जो ट्वीट कहा और उसमें एक मिसमैच ऐसा कहा जा रहा है, और वो उन्होंने भ्रामक तक रखने की कोशिश की आरोप लगा रहे, तो इसकी जिम्मेदारी?
0: देखिए, राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट सब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे। धन्यवाद।
2: The opposition is on the streets heading to the Election Commission headquarters this morning demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar, and at almost exactly the same time the BJP has mounted its own defense with Sambit Patra turning to the Supreme Court's SIR judgment

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: A verdict can change a business. A law can reshape an industry. A regulation can create an opportunity or a risk. Because what happens in courts could have a direct impact on your business. Join me as I decode what legal decisions mean for markets, businesses, and investments. Closing argument, only on NTD Profit.
1: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द कॉन्वर्सेशन एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 टू डीकोड द शिफ्ट्स redraw possibilities NDTV World Summit 2026 A World Between Orders 22nd and 23rd October New Delhi

0: के माध्यम से राहुल गांधी को लॉन्च करना पड़े तो हम देश के लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे। इस प्रक्रिया में समय समय पर इंडियन आर्मी पर अटैक हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल पर अटैक हुआ, इसमें भारत के हिंदुओं पर भी अटैक हुआ, ईवीएम मशीन पर अटैक हुआ, और अभी कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। और हमें लगता है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं।
1: बेईमानी जो कर सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इसलिए कह रहे हैं कि एक बार घपला कर ले, बंगाल लूट लिया ना, क्या करोगे, इसीलिए नारा दे रहे वन नेशन वन इलेक्शन, चुनाव के माध्यम से पूरा घपला कर ले।
2: आज चाहे बंगाल में जो जिस तरीके से एसआईआर किया गया है, और सारा देश में हर जगह में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि लोगों में रिजेंटमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है। और ये इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता था, हमारे देश में बहुत बड़ा एक वर्ग है, चाहे वो देश का किसी भी कोने में हो, सबको लगता था कि सरकार काम नहीं करेंगे तो सरकार को सबक सिखाएंगे, सरकार को आने वाला चुनाव में दिखाएंगे। आप बीजेपी इतना कॉम्प्लिसेट क्यों है? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़े, चाहे गैस का रेट बढ़े, चाहे पेट्रोल का रेट बढ़े, चाहे केरोसिन का रेट बढ़े, चाहे अनाज का रेट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है भाई गणेश कुमार बैठा है, वोट चोरी करके जीते हैं।
3: वो सब तो सामान्य रणनीति है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है कि मोदी जी डर गए, अमित शाह जी डर गए, ये डर उनसे करवा रहा है। किस बात का डर? एक बेईमान को बचाने का डर, क्योंकि उस बेईमान ने अपनी बेईमानी का के तौर तरीकों से आपको सरकारें डिलीवर की। शर्म आनी चाहिए, खास करके इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद और कल सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद।
4: लेकिन बीजेपी बचाओ में कह रही है कि आप लोग अनार्की अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए।
3: इंडियन एक्सप्रेस अराजकता का हिस्सा है, बहुत लोग लिखते हैं उसमें, राम माधव जी अक्सर लिखते हैं, पीएम ने भी लिखा था हाल में, मुझे याद आया। मतलब ये किसी भी सत्ता की सबसे बड़ी चीज होती है, जब वो कमजोर होने लगे ना, अराजकता, फॉरेन हैंड, ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला।
5: चुनाव आयोग के समर्थन बीजेपी क्यों खड़ी होकर आ गई? क्योंकि उन्हीं को फायदा मिल रहा, चुनाव एक जो बेईमानी कर रहा, जो धांधली कर रहा, जो वोट काट रहा, उसका सारा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, इसलिए बीजेपी कह रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि वोट चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, ये नारा एकदम सही है। इसलिए जो है जम के विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हर जगह बॉम्बे में देखो लाखों लोग सड़कों पर,
4: कह रहे हैं आप लोग,
5: मतलब जनता को विश्वास नहीं रह गया।
4: राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश है, भले ही अराजकता हो जाए।
5: राहुल गांधी 2004 में लॉन्च हो गए तो तब से लड़ रहे हैं, तो ये तो सिर्फ जो है बीजेपी का प्रोपोगंडा है, क्योंकि उन्हीं को सबसे फायदा मिला इसका, तो मिली भगत जो उनकी थी चुनाव आयोग से, वो खुल के आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत हुआ, आप इतने करोड़ों लोगों के वोट नहीं काट सकते।
6: The new thing you will see is that the BJD has also joined us.
7: Okay.
6: So a lot of people will be joining us.
8: And Ankit Tyagi now live with me. I'm going to cut across to Ankit. Ankit, are the Gandhi still sitting there on Dharna? Has the police deployment increased? What can you tell us on what's happening on the ground?
9: Last we spoke, in fact, the presence of the Congress MPs has increased here. They've managed to make their way in. Pawan Khera has also come in. Charanjit Singh Channi was already here. Some refreshments have also come in for the party which is protesting under the banyan tree. I can also see Rahul Gandhi's vehicles have also been brought in. So whether he will go in his own vehicle, he will be detained, we will have to wait and see. But the police is on one side patiently waiting. There was conversation that took place between the police and Mr. Gandhi and Priyanka Gandhi. Dipinder Hooda, Pawan Khera, KC Venugopal, the General Secretary in charge of the Congress Party, also made his way in. So all of these people, Parniti Shinde, all of them are here at this moment. So it started with Rahul and Priyanka Gandhi. Dipinder Hooda followed soon. Then B.V. Srinivas, After that, Charanjit Singh Channi and now KC Venugopal and Pawan Khera have also joined in. So some bolstering of the Congress party's presence here, you know, at this protest under the banyan tree on gate number 4 of the Akashwani Bhavan. Now, it's very interesting, you know, we were just trying to get in a word from, okay, what I can see, there is a bus being brought in. I don't think so. You would be able to see that in your camera, on your screen at this moment because of this banyan tree. A bus is being moved in. So the indications are, if that bus is coming in, that means that Rahul Gandhi and the other MPs will be detained and will be taken in that bus. Some sort of preparation is being done by the police. Whether that happens here or not, we will have to wait and see. But the police seems to be bringing in a vehicle in which they will be detained from here. And we will have to wait and see whether it is an easy detention, whether they just walk up and walk in, or they will be dragged from this very place. Their security has put in a cordon around them. And some of the Congress leaders, in fact, Rahul Gandhi's support staff, you will see that his staff is bringing in some water and some refreshments for those who are...

0: आपने कैसे आप जांच करेंगे और लगभग 45 लाख ऐसे नाम है जो डुप्लीकेट आ रहे हैं या वही नाम बार बार रिपीट हो रहे
1: हैं। 3 खंडों में तेलंगाना में स्पष्ट रूप से पारदर्शी रूप से गलत पाए गए हैं। अगर कोई सरकारी शोध हो और सही रूप से और समय पूरा मिले तो ये 70,07,00,000 भी हो सकते हैं, 3 करोड़ भी हो सकते
0: हैं। चोरी करने के बेसिक ब्लॉक 2 सिस्टम है, एक सिस्टम वोटर लिस्ट को टैम्पर करने का, वोटर्स ऐड सब्ट्रैक्ट, और दूसरा सिस्टम ईवीएम का सिस्टम।
2: अवसरों पर पिछले कुछ वर्षों में स्वयं राहुल गांधी जी और उनके अनेक वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यह कहा गया है कि नहीं, कि अनेक जगहों पर वोटर डुप्लीकेशन है। अभिषेक मनु सिंघवी भी बोल रहे हैं, अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं, सचिन पायलट जी बोल रहे हैं और तमाम नामी गिरामी लोग बोल रहे हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, केसी वेणुगोपाल जी बोल रहे हैं, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं, आप 2016, 18, 20, 21 में सही थे या आज सही हैं? कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो तब सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है। हकीकत यह, तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। कि तब तो वो सच था कि वोटर हटाए जाने चाहिए और जब हटाने की प्रक्रिया हो तो वो गड़बड़ हो रही है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, 4-5 सवाल। पहली बात तो यह कि जिन 13 करोड़ वोटर्स की बात आप कर रहे हैं, इसमें 2.8 करोड़ लोग मृतक हैं, 6.3 करोड़ लोग स्थानांतरित हैं और 1 करोड़ लोग डुप्लीकेट हैं जिनका 2 जगह वोट है, और 3 करोड़ लोग अनुपस्थित हैं, नॉन ट्रेसेबल हैं। अब हम यह पूछना चाहते हैं, और इनमें भी यदि किसी के पास कोई भी आधार होता है तो उन्हें मौका है कि वो कागज दिखा के आ सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे कि जब आप ये फिगर बोलते हैं तो उसमें डेड एंड डुप्लीकेट है या नहीं। और दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहते हैं, आज देश के सामने जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति होता है, वैसे एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? 1 दर्जन, आधा दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन, भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, सेबी, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है, भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया? तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पर क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है और विदेश में जाकर भी यह सब बोला है। वैसे तो उनके लिए बड़ी दुख की बात है, उन्होंने मार्च 2023 में जाके विदेश में बोला था, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका, इंग्लैंड एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन इंडिया। अब क्या कहा जाए, वो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका ने तो कह दिया भारत के अंदर चुनावी प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से होती है और चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। खैर, दूसरा प्रश्न, भारत में पहली बार किसी भी व्यवस्था में जांच नहीं हो रही है। ये पहले भी कई बार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जांच हो चुकी है कि जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जिनका वास्तविक हक है, उन्हें मिलेगा कि नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद जब राशन कार्डों की जांच हुई तो 5.8 करोड़ राशन कार्ड ऐसे लोगों के पाए गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे। जब मनरेगा के कार्डों की जांच हुई तो 2019 के बाद 4.45 करोड़ लोग ऐसे पाए गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे और मनरेगा की मजदूरी पा रहे थे। जिन लोगों ने 5.80 करोड़ राशन खाया, जिन्होंने 4.45 करोड़ की मजदूरी खाई, वही लोकतंत्र खाने का प्रयास कर रहे हैं डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स के द्वारा। और हम बहुत स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहते हैं कि इन वोटर्स की अगर जांच हो और उसके बाद यह स्थापित हो सके कि इन्हें मताधिकार वास्तविक वोटर को मिलना चाहिए या नहीं, जो आपके नेता बोल रहे थे और आप कह रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए, तो इसमें किसका फायदा है? कांग्रेस से हम साफ पूछना चाहते हैं, कांग्रेस किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है? एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स को वोटिंग राइट देकर बगैर किसी जांच के, पुनः कह रहा हूं, बगैर किसी जांच के एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स के द्वारा क्या कांग्रेस किसको लाभ पहुंचाना चाह रही है? तीसरा प्रश्न, कांग्रेस ने बताया कि पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था, उससे पहले आप कितने राज्यों में सत्ता में थे? मैं ये बात कह चुका हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, उससे पहले कांग्रेस 228 लोकसभा सीटों वाले राज्यों से, यानी 2003 से पहले राहुल गांधी के राजनीति में पदार्पण का जो कहर बरपा है कांग्रेस पे, उससे पहले वो 228 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो चुके थे। 1967 से तमिलनाडु 39 सीट्स, 1977 से पश्चिम बंगाल 42 सीट्स, 1990 से यूपी बिहार 120 सीट्स, 1995 से गुजरात 26 सीट्स, 1999 से उड़ीसा 21 सीट्स। इन 228 लोकसभा सीटों में आज आपके लिए 10 सीटें पाना भी मुश्किल होता है। यह किसके कर्मों की वजह से है? क्या इसका वोट से, जब भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नहीं थी, जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का कहीं नाम भी नहीं था, 67-77 उस जमाने से जो आप गायब हैं, वो किसकी वजह से है? तीसरा, हम यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, आपने आज तक कितने विधानसभा चुनावों में जाकर अपनी पार्टी के लिए डेरा डाल के चुनाव प्रचार किया है? कभी रहे 15 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता भी रहे? जैसे गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 25 दिन रहेंगे, राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, 2004 से आज तक कांग्रेस को चुनाव बताए जिसमें इन्होंने विधानसभा चुनावों में एट ए स्ट्रेच एक राज्य में 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता रहे हो। यानी वास्तविकता यह है कि एक काम चोर है और वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, जो काम ही नहीं करना चाहता। आज काम चोर शोर मचा रहा है, अन्यथा कांग्रेस से बताए। और अगला प्रश्न है, आज कई राज्यों में बाई इलेक्शन हो रहे हैं,

0: कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक रूप से एक राजतंत्र है, जिसने लोकतंत्र का लबादा ओढ़ा हुआ है, वह वास्तविक लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वह लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर पिछले 12 सालों में निराधार, निरर्थक, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो मैं पुनः ये एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस ने आज तक कितनी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाए और कितने साबित हुए। क्वेश्चन नंबर दो, कि अगर के लिए गायब हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और क्वेश्चन नंबर 4, आज तक राहुल गांधी ने कितने चुनावों में लगातार एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता या दो हफ्ता कैंप किया है और प्रचार किया है। और क्वेश्चन नंबर 5, आज चुनाव हो रहे हैं, उपचुनावों में वोटर लिस्ट चेक कर ली है नहीं। और सारे प्रश्नों के बाद आपको एक चीज साफ समझ में आएगी, और जो इनके नेता बोल रहे थे कि खुद कह रहे थे कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, खुद कह रहे थे कि ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और उनकी जांच होनी चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए, जब हटाया जाता है तब आकर यह अनर्गल प्रलाप करते हैं। इससे बस एक बात बहुत स्पष्ट है, जहां से बात शुरू की थी वहीं पे समाप्त करता हूं, निरंतर पराजय के कारण विक्षिप्त हो चुकी कांग्रेस पार्टी को एक बार पुनः अपना आंकड़ा भी देखना चाहिए। आज आप सब लोगों ने क्या देखा, उन्होंने कहा 140 सांसद जाएंगे, कांग्रेस के कितने सांसद हैं, 99 लोकसभा में और 30-31 राज्यसभा में। भाई 130 तो आप ही के हैं, इससे बहुत साफ है कि कोई भी कांग्रेस का सहयोगी दल का सांसद इक्का दुक्का को छोड़ के, जिनके पास अब कोई काम नहीं रह गया है उनको छोड़ के, आज कोई भी साथ में नहीं है। तो आप अपने एजेंडा पर अपने सहयोगी दलों को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं और देश में से अपेक्षा कर रहे हैं कि आपकी इन झूठी बातों पर वह अविश्वास करे और वही बात जो आपके नेता पहले बोल रहे थे उस पर विश्वास करे। या आज तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कांग्रेस से कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद।
1: प्रश्न पूछो जी।
2: All right, so that was the second press conference that the BJP is holding today against Rahul Gandhi and the opposition. Ankit Tyagi is still live with us. He's going to get us a ground report from outside the Nirvachan Sadan, the Election Commission of India, as well as the Akashvani Bhavan, where inside Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi have been sitting for a while now. 6 demands by India bloc versus 5 questions by the BJP, Ankit.
3: That's right. But, you know, for the Congress party, I mean, they would feel that whatever the protest that they are doing is somewhere hitting its mark, because the BJP back-to-back press conferences happening at this moment. That was BJP MP Sudhanshu Trivedi. But before we talk more about that, Vasudha, Vedika, I beg your pardon. You know, just when you were coming to me, the presser was getting over, some Congress workers were able to get inside. Suddenly, there was a surge of the Congress workers. Those who came inside, the police which were standing here had to run to try and stop them. That bus which was brought in for Rahul and Priyanka Gandhi, she's standing at this moment looking at what has happened there. Where she's looking is where the Congress workers were able to jump inside the Akashvani Bhavan, and they, all of them, the police had to run and stop them, not allowing them to come here. Once again, the DCP here, Sachin Sharma, has come to speak to Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. He is having a conversation with them. But at this moment, the longer it goes, the Congress workers, especially the Indian Youth Congress team, they were the ones, those who came in, tried to storm inside the Akashvani Bhavan to come and support the protest of Rahul Gandhi. The inside the Akashvani Bhavan, the, as I, you know, the standoff between the police

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
1: Higher rate, check the audio.
0: Let's do it. Let's start.
2: Breaking story, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
3: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
3: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
0: The line of control, Shivarur, NDTV.
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
5: अ वर्डिक्ट कैन चेंज अ बिजनेस अ लॉ कैन रीशेप एन इंडस्ट्री अ रेगुलेशन कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी और अ रिस्क बिकॉज व्हाट हैपेंस इन कोर्ट्स कुड हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस जॉइन मी एज आई डीकोड व्हाट लीगल डिसीजंस मीन for markets, businesses, and investments. Closing argument, only on NDTV Profit.
6: I know the game and the game behind.
7: Welcome back. A heavy showdown underway in Delhi as the opposition leaders are protesting outside the office of the Election Commission of India. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Akhilesh Yadav, Sanjay Raut, Manoj Jha, John Brita, Supriya Sule led this protest along with others. Akhilesh Yadav was detained by the Delhi police briefly while Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra are sitting in Dharna. Opposition MPs are seeking the resignation of the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. Opposition leaders have hit out at the Chief Election Commissioner. Akhilesh Yadav said the BJP has won all elections by unfair means. UBT MP Sanjay Raut says Gyanesh Kumar is the enemy of the nation. Meanwhile, the BJP slammed Rahul Gandhi over his claims of Form 6 and SIR and said that Rahul is spreading lies. There were dramatic scenes as well with Rahul Gandhi and climbing over barricades as well. Right now, something of a standoff is underway. You can see those visuals that are coming in right now. And this is as one is waiting to see what happens next. There is this, you know, standoff of sorts that is underway right now. And Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra are there sitting on Dharna. And this is the Akashvani building where they've been sitting inside. And I think he's going to address the media in a short while from now. So there you can see Rahul Gandhi has approached, where the media has been waiting on the other side of the wall, and he will, the other side of the gate, and he will be speaking to the media. Let's listen in. All right, we will try and get you what he said, but this is after dramatic scenes earlier today where Rahul Gandhi and Abhishek Banerjee climbed over the barricades that had been put up by the Delhi police as they marched from Parliament towards the Election Commission of India office. Currently, they are in the Akashvani building speaking to the media. Let's listen in to what has been said so far.
8: Are democracy ko restore karna, vote ko restore karna, ye hamara maksad hai.
9: BJP keh rahi hai ki aap log chunav aayog par hamla kar rahe hain, arajakta phailane ki koshish mein.
8: Hum nahi kar rahe, wahi log kar rahe hain. उन्हीं के लोग तो बताए कि वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ बदलाव हो रहा है और वही लोग आपस में लड़ रहे हैं और सच्चाई बाहर आ रही है, तो हमारा नहीं उनका है. तो ये मोदी का बीजेपी की चाल है कि सब कुछ अपने हाथ में लेकर इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहिए.
9: आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आगे पुलिस ने
8: रणनीति, अरे लड़ रहे थे, लड़ने के लिए तैयार.
10: सहयोगी दलों ने यह निर्णय लिया है कि भले ही अराजकता के माध्यम से राहुल गांधी को लॉन्च करना पड़े तो हम देश के लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे. इस प्रक्रिया में समय समय पर इंडियन आर्मी पर अटैक हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल पर अटैक हुआ, इसमें भारत के हिंदुओं पर भी अटैक हुआ, ईवीएम मशीन पर अटैक हुआ, और अभी कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। और हमें लगता है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं।
11: कोर्ट में बेईमानी जो कर सकते हैं, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, इसलिए कह रहे हैं कि एक बार घपला कर ले, बंगाल लूट लिया ना, क्या करोगे, इसीलिए नारा दे रहे वन नेशन वन इलेक्शन, चुनाव के माध्यम से पूरा घपला कर ले।
12: ये मार्च नहीं निकाल रहे, हार की खीज निकाल रहे हैं। हार जाओ तो खीजो, आरोप लगाओ, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो, लेकिन ये तो सोच लो विपक्ष के मित्रों कि जिस व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं उसी व्यवस्था के अंतर्गत आप केरल में जीते, क्या वो जीत अवैध है? आप कर्नाटक में जीते, क्या वो जीत अवैध थी? आप हिमाचल में जीते, क्या वो जीत अवैध थी? लोकतंत्र का अपमान मत करो, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम मत करो, और विशेषकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाओगे तो देश को अराजकता की आग में झोंकने का पाप करोगे।
13: आज चाहे बंगाल में जो जिस तरीके से एसआईआर किया गया है, और सारा देश में हर जगह में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ये दर्शाता है कि लोगों में रिजेंटमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है। और ये इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता था हमारे देश में बहुत बड़ा एक वर्ग है, चाहे वो देश का किसी भी कोने में हो, सबको लगता था कि सरकार काम नहीं करेंगे तो सरकार को सबक सिखाएंगे, सरकार को आने वाला चुनाव में दिखाएंगे। आप बीजेपी इतना कॉम्प्लिसेंट क्यों है? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़े, चाहे गैस का रेट बढ़े, चाहे पेट्रोल का रेट बढ़े, चाहे केरोसिन का रेट बढ़े, चाहे अनाज का रेट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है भाई गणेश कुमार बैठा है वोट चोरी करके जीते।
14: और ये भिन्न भिन्न अवसरों पर पिछले कुछ वर्षों में स्वयं राहुल गांधी जी और उनके अनेक वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यह कहा गया है कि नहीं, कि अनेक जगहों पर वोटर डुप्लीकेशन है। अभिषेक मनु सिंघवी भी बोल रहे हैं, अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं, सचिन पायलट जी बोल रहे हैं, और तमाम नामी गिरामी लोग बोल रहे हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, केसी वेणुगोपाल जी बोल रहे हैं, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं, आप 2016, 18, 20, 21 में सही थे या आज सही हैं? कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो तब सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है। हकीकत यह, तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। कि तब तो वो सच था कि वोटर हटाए जाने चाहिए, और जब हटाने की प्रक्रिया हो तो वो गड़बड़ हो रही है।
7: राहुल गांधी हैज स्पोकन टू द मीडिया आफ्टर द मार्च एंड आफ्टर ही वाज सिटिंग ऑन धरना एट द आकाशवाणी भवन। ही स्पोक टू द मीडिया सेइंग दैट मोर देन 300 ऑपोजिशन एमपीज मार्च्ड फ्रॉम पार्लियामेंट टू द इलेक्शन कमीशन टू मीट द इलेक्शन कमिश्नर्स टुडे। ही सेइंग दैट वी रिप्रेजेंट क्रॉस ऑफ इंडियंस एंड व्हाई आरंट द इलेक्शन कमिश्नर्स मीटिंग अस एंड व्हाई इज द पुलिस स्टॉपिंग एंड थ्रेटनिंग अस।
15: ये चारों तरफ देखिए, विपक्ष के सारे एमपी, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद आए हैं। हम इलेक्शन कमीशन जाना चाहते हैं, वोट चोरी पर ज्ञानेश कुमार से हम सवाल पूछना चाहते हैं, और यहाँ पे हमें रोका गया है। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम सबको यहाँ पे रोका जा रहा है। यह हिंदुस्तान का आवाज है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके सांसद हैं, आपकी आवाज है। यहाँ इनको अडानी जी के कारण मोदी जी, अमित शाह, मोहन भगवत जी यहाँ रोके हैं, देश को हाईजैक कर दिया।
7: Well, let's go across to Ankit Tyagi, who's been tracking all these developments, the opposition MPs march from Parliament to the Election Commission office. They're currently at Akashvani Bhavan. Ankit, tell us what is happening right now. We heard Rahul Gandhi and it seems there's something of a standoff in place right now. What is taking place?
16: You know, there is something that just happened. Rahul Gandhi, in fact, have been sitting here for the last couple of hours, along with a few Congress MPs. He got up, he spoke to the media from behind these very, peripheral wall of the Akashvani Bhavan gate number 4. And then I saw them. I think the plan is to try and march towards gate number 4, which is locked. If you get out of the gate number 4 of the Akashvani Bhavan, you only have to take a left and walk 250 meters, and that is where the Nirvachan Sadan is. So Rahul Gandhi, while speaking to the media, very clearly said that they don't understand when they want to, in fact, go and they are demanding, and this was a protest march of the opposition MPs. Why is the police threatening and not allowing them to go? That's the charge that they are making at this moment. And he spoke to the media and went back and sat there. You would see in our frame, we are also stuck like a fly on one of the, boundary barricade here. And Ashwani is trying to give you a sense of how where the Congress MPs are sitting in with Rahul Gandhi under that banyan tree. Priyanka Gandhi was sitting for the last couple of hours, is gotten up now. Right next to her is KC Venugopal, and I can see Pawan Khera there. Charanjit Singh Channi of the Congress party is also here. So is Parniti Shinde and few other MPs, Imran Pratap Gadi and others of the Congress party, Dipinder Hooda as well. Now, 10:30 is when this entire protest march began from the Makar Dwar in the parliament. From there, the opposition MPs walked for about 10 minutes and were able to reach the Akashvani Bhavan. Once they reached Akashvani Bhavan, that's where the police had put up multi-layer barricading. They sat down there, protest continued for an hour, and then they were picked up. Once they were picked up, Rahul and Priyanka Gandhi were in the same bus. Their protesters, the Congress Karyakartas, came in front, sat in front of that bus, and Rahul and Priyanka Gandhi were able to get out of that bus, and they just walked in from gate number 2 of the Akashvani Bhavan, and then they walked across gate number 3 to gate number 4, and they tried to make their way out. This is when the police was busy detaining other MPs. Some conversation going on about what to do next. I can see Priyanka and Rahul Gandhi speaking to each other. B.B. Srinivas and others are also speaking with K.C. Venugopal. Priyanka Gandhi is going somewhere. We yet don't know where is she going. As she goes, there is her security paraphernalia. And about 8 to 10 Delhi police personnel, those who are also going there. I think what she has done will try, because the banyan tree is blocking our view.
7: All right, Ankit Tyagi there giving us those details of what's taking place at Akashvani Bhavan as the opposition and Congress, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Vadra, planning to go to the Election Commission office. They continue to be seated there right now, and we will continue to bring you all those developments. Rahul Gandhi hitting out at the police, hitting out at the government, also saying, why are police stopping us, saying that we want to meet with the election commissioners. Why are we being stopped? We represent crores of Indians across the country. Well, moving on for the moment to some breaking news coming in, and the Delhi police have arrested a 24-year-old man for allegedly creating and circulating an AI-generated video targeting Delhi ACP Vivek Bhagat. The accused, identified as a Nadeem Ahmed, was allegedly operating a social media handle called News Aina. Police say that the video was designed to make it appear that ACP Vivek Bhagat was misbehaving with a woman protester. Remember, that's been a huge controversy after protests in Delhi over the long weekend. But the video is fake, is what the police are saying now. The Delhi police cyber team has traced the content to Nadeem Ahmed, who police say admitted to creating the fake reels and posters using AI tools. Police allege the content was created on the 3rd of October and circulated the following day. Investigators are probing a larger question. Was this the work of one individual, or was there a wider network behind the creation, funding and circulation of this fake content?
17: हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट है, उसने देखा कि एक सीसी फुटेज चलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट साइट का है वहाँ का है ये सीसी फुटेज, और इसमें दिखाया गया है जो हमारा पुलिस अधिकारी को एक महिला के साथ गलत व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, और उसमें उसका नाम भी बताया गया है। तब अब जब इसकी हमने वीडियो की जाँच की तो पता चला इसके पीछे न्यूज़ एंगल है एक नदीम अहमद करके, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। वो पलोल हरियाणा का रहने वाला था, और तुरंत हमारी टीम ने उसको लोकेट किया और उसको अरेस्ट अरेस्ट किया और उसी अब प्रारंभिक जांच चल रही है। उसने शुरुआत के बयान में बताया है कि उसका वो एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम करता है।
7: All right, with that, we'll sip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: out at Gyanesh Kumar, Akhilesh Yadav said the BJP has won all elections by unfair means, while UBT MP Sanjay Raut says that Gyanesh Kumar is the enemy of the nation. Remember, Congress also accusing him of treason. Meanwhile, the BJP has slammed Rahul Gandhi and the Congress over his claims of Form 6 and SIR and said that Rahul Gandhi is spreading lies, that the opposition is creating anarchy in the national capital. And the BJP also taunting the Congress, saying that this is another relaunch of Rahul Gandhi.
1: अरे डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, वोट को रिस्टोर करना, ये हमारा मकसद है।
2: बीजेपी कह रही है कि आप लोग चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे
1: हैं। हम नहीं कर रहे, वही लोग कर रहे हैं। उन्हीं के लोग तो बताए कि वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ बदलाव हो रहा है, और वही लोग आपस में लड़ रहे हैं और सच्चाई बाहर आ रही है, तो हमारा नहीं उनका है। तो ये मोदी का बीजेपी की चाल है कि सब कुछ अपने हाथ में लेकर इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहिए।
2: आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आगे पुलिस ने
1: रणनीति, अरे लड़ रहे थे, लड़ने के लिए तैयार।
3: सहयोगी दलों ने ये निर्णय लिया है कि भले ही अराजकता के माध्यम से राहुल गांधी को लॉन्च करना पड़े तो हम देश के लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे। इस प्रक्रिया में समय समय पर इंडियन आर्मी पर अटैक हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल पर अटैक हुआ, इसमें भारत के हिंदुओं पर भी अटैक हुआ, ईवीएम मशीन पर अटैक हुआ, और अभी कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। और हमें लगता है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं।
4: हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं, पता नहीं क्यों 300 एमपी को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब?
5: हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, आप 2016, 18, 20, 21 में सही थे या आज सही हैं? कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो तब सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है। हकीकत ये, तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। कि तब तो वो सच था कि वोटर हटाए जाने चाहिए और जब हटाने की प्रक्रिया हो तो वो गड़बड़ हो रही है।
6: बेईमानी जो कर सकते हैं, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि एक बार घपला कर ले, बंगाल लूट लिया ना, क्या करोगे आप? इसीलिए नारा दे रहे वन नेशन वन इलेक्शन, चुनाव के माध्यम से पूरा घपला कर ले।
7: ये मार्च नहीं निकाल रहे, हार की खीज निकाल रहे हैं। हार जाओ तो खीजो, आरोप लगाओ, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो, लेकिन ये तो सोच लो विपक्ष के मित्रों कि जिस व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं उसी व्यवस्था के अंतर्गत आप केरल में जीते, क्या वो जीत अवैध है? आप कर्नाटक में जीते, क्या वो जीत अवैध थी? आप हिमाचल में जीते, क्या वो जीत अवैध थी? लोकतंत्र का अपमान मत करो, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम मत करो, और विशेषकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाओगे तो देश को अराजकता की आग में झोंकने का पाप करोगे।
0: All right, so the opposition there currently, it's a standoff with them at the right next to the Election Commission of India office. Remember, they marched this morning from Parliament, and their Rahul Gandhi, in fact, has hit out saying 300 opposition MPs want to meet with the election commissioners that why are they not meeting us and why is the Delhi police preventing us from going to the election commission office. Let's go across to Ankit Tyagi, who's been tracking all these developments. Ankit, tell us what is going on right now. There is a bit of a standoff in a sense there with the Congress leader sitting on Dharna right next to the election commission office.
8: Well, they are inside. In fact, it's been more than 3 hours now. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi and some Congress MPs have been here. They are standing there. You will see them. You know, we are stuck to this area where that's the peripheral wall, the gate number 4 of the Akash Vani Bhavan. But just behind me, in fact, you will see that some supporters of the Congress party. I will just try and ask Ashwini if he can turn around. And he will show you that some supporters of the Congress party were here. And that's going to be the challenge with the police is facing. One after another, the longer Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi stay here, there are waves of these Congress supporters which will come, shout slogans, and the police moves in to pick them up. So on your screens at this moment, you would see that police bus, they're forcing, in fact, all these protesters to turn around. Let's just go back to where Rahul and Priyanka Gandhi are. Just a short while back, in fact, about 10 minutes back, senior police officials and came in. There was a larger contingent of the police which was brought in. It seemed that there is going to be some action that could start. Both Rahul and Priyanka Gandhi are standing here, and throughout they have spoken to the media, but they are not ready to budge. The senior police officials, those who came to speak to them, requested them that, you know, you can court arrest, you can court detention, and we will take you out. That bus that you are standing there, you see standing there, is the one that they have brought in to take them away. But I very quickly want to tell you, just to, for the viewers, those who are tuning in, who are not from the national capital, this is the very heart, the Sansad Marg, this is the very heart of the national capital. And where we are standing at the gate number 4 of the Akash Vani Bhavan, which houses the headquarters and, of course, the entire operations of the All India Radio and Prasar Bharati. This is from here, if you just get out of this gate and you go about 250 meters, that's where the Nirvachan Sadan, the office of the election,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं, 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब।
1: हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, आप 2016, 18, 20, 21 में सही थे या आज सही हैं? कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो तब सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है। हकीकत यह, तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। कि तब तो वो सच था कि वोटर हटाए जाने चाहिए और जब हटाने की प्रक्रिया हो तो वो गड़बड़ हो रही है।
2: All right, yet another BJP press are now taking place. Let's listen into what is being said.
3: आप सब याद करिए, राहुल गांधी ने एक पोस्ट डाली थी और इस पोस्ट पे राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस एक महिला पत्रकार के साथ में या दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर ने महिला पत्रकार के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो आप सबने देखा, जिसमें यह साबित हुआ और जिसमें तथ्य सामने आए कि कैसे जो पूरा वीडियो सर्कुलेट हुआ वो वीडियो झूठा वीडियो था। वो एक नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसकी तस्वीर आप सबने देखी होगी, उस नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर ने एक फेक AI वीडियो को जनरेट किया और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस सेवा दल, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, तमाम ये पूरे के पूरा इकोसिस्टम स्ट्रीट एनार्की का समर्थन करते हुए एक झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। दे अटेम्प्टेड टू स्प्रेड अ फेक नैरेटिव, जो झूठ आज पकड़ा गया। उस झूठ पर राहुल गांधी कंप्लीटली खामोश है और ये एक पैटर्न बन चुका है। और ये पैटर्न अगर आप सभी ध्यान से देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम चलाता है, उस पैटर्न में उसका एंड ऑब्जेक्टिव झूठे नैरेटिव्स के जरिए देश के लोकतंत्र में अराजकता फैलाना होता है। तो अगर आपने इस केस में देखा होगा, 3 अक्टूबर को एक फर्जी AI वीडियो जनरेट होता है कोई एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर द्वारा। ये इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसका नाम नदीम अहमद है, और उस वीडियो को पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम 24 घंटे तक एम्पलीफाई करता है। राहुल गांधी तो ये तक लिख देते हैं कि किसी पत्रकार के साथ बदसुलूकी हुई। मतलब एक कंसर्टेड एफर्ट के जरिए, इन अ कॉन्शियस एफर्ट, ये दिल्ली पुलिस और स्टेट को विलनाइज करने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें तथ्य होते तो समझ में आता, परंतु ये झूठ सामने आया। सो स्टेप वन इस पूरे इकोसिस्टम का रहता है कि किसी भी इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर के जरिए एक फेक वीडियो या एक फेक नैरेटिव को आगे रखो। उस फेक नैरेटिव को राहुल गांधी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम 24 घंटे तक अलग अलग हैंडल्स के जरिए फैलाने का प्रयास करता है। अब ये नेचुरल है कि अगर पुलिस के ऊपर या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो उसकी जांच करेंगे। पर तब तक ऑलरेडी कांग्रेस इकोसिस्टम उसको वायरल करने का प्रयास करता है और देश में ऐसा माहौल बनाता है कि जो उन्होंने बोला वो सत्य है। अब अगर ये इकोसिस्टम करता तो हम समझ पाते हैं, पर इस इकोसिस्टम को लेजिटिमाइज जो धरनाबाज राहुल गांधी है, जो रील मेकर राहुल गांधी है, जिनका पेशा बन चुका है झूठ बोलने का, वो राहुल गांधी एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर के वीडियो को कोट करते हैं और ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये सत्य है। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है, जैसा आपने दिल्ली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, कि एक टेंथ फेल नदीम अहमद था जिसको ये टास्क दिया गया था कि तुमको फेक वीडियो बनाना है और इस फेक वीडियो के जरिए अशांति और पुलिस या किसी भी स्टेट के ऑर्गन के प्रति, कल को पत्रकार भी हो सकता है, कल को कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, कल को सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, कल को तीसरी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, उसके खिलाफ एक वातावरण झूठे नैरेटिव पे बनाना। अब जब ये अरेस्ट हो चुका है तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम और राहुल गांधी क्या इस पर स्पष्टीकरण देंगे कि झूठ की दुकान चलाने वाले और झूठे नैरेटिव के जरिए इस देश में एक झूठा वातावरण बनाने का प्रयास करने वाले राहुल गांधी, जिसने दिल्ली पुलिस को फॉल्सली विलिफाई करने का प्रयास किया, क्या आज इस देश का तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो राहुल गांधी से सवाल पूछने से घबराता है, क्या आज वो राहुल गांधी का जब झूठ पकड़ा गया है तो आज राहुल गांधी से सवाल पूछेगा कि राहुल गांधी जी जो आपने झूठ बोला वो पकड़ा गया तो उस झूठ के लिए अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। और यही पैटर्न हम हर मुद्दे पे देखते हैं और हम ये देश को सचेत करना चाहते हैं कि जो भी अब कांग्रेस इकोसिस्टम और राहुल गांधी बोले उसके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ झूठ है और लाइज है। वो लोकतंत्र बचाने के लिए यहां पे नहीं है, वो अपने परिवार को सत्ता में लाने के लिए है और उसका एक पूरा मॉडल है जो मैंने आपके सामने रखा, जिसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स को ये पूरा इकोसिस्टम फंड करता है, फंड करने के जरिए झूठे वीडियोस मार्केट में सर्कुलेट करता है, उस झूठे वीडियोस में स्टेट की मशीनरी, भले वो दिल्ली पुलिस हो गया, आज इस केस में दिल्ली पुलिस है, कल सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो सकता है, कोई भी स्टेट की मशीनरी संवैधानिक ढांचे के खिलाफ ये एक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं और इसको खुद एम्पलीफाई राहुल गांधी करते हैं। और इससे यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी का पूरा इकोसिस्टम इंडियन डेमोक्रेसी को झूठ के जरिए और स्ट्रीट एनार्की के जरिए हाईजैक करने का प्रयास कर रहा है, जो ये देश की जनता देख रही है। मेरा पहला सवाल राहुल गांधी से ये है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो जब फेक पाया गया तो आपने अपना ट्वीट अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया? दूसरा, जब आपने इस फेक न्यूज को आगे बढ़ाया और आपके पूरे इकोसिस्टम ने इसको आगे बढ़ाया, क्या ये फेक वीडियो बनाने का ऑर्डर और डायरेक्शन कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल ने दिया था? तीसरा, क्या ये इस देश के पत्रकारों के साथ में भी बड़ा अन्याय नहीं है जो लेजिटिमेट रिपोर्टिंग ग्राउंड पे करते हैं, जो इतनी मेहनत के साथ जमीन पर जाके खबर को लाने का प्रयास करते हैं, आज कांग्रेस इकोसिस्टम क्या अपने पेड वॉलंटियर्स और पेड वर्कर्स को अलग अलग प्रोटेस्टों में घुसाकर क्या इस देश के फोर्थ स्तंभ को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रहा है? पांचवा, ये एक पैटर्न है और इससे क्या कांग्रेस इकोसिस्टम इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास नहीं कर रहा है? इज द कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधीज एंटायर इकोसिस्टम नॉट अटेम्प्टिंग टू डीलेजिटिमाइज द इंडियन स्टेट्स मॉरल फैब्रिक? राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी आर वर्किंग इन अ वेरी कॉन्शियस एंड अ कंसर्टेड एफर्ट वेयर देयर एंटायर इकोसिस्टम इज फंडिंग इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स विच आर नॉट जर्नलिस्ट। These independent content creators have been tasked by the Congress party in the Congress ecosystem, Rahul Gandhi in particular, to make fake videos. और इन fake videos के जरिए ये इस देश के Indian constitutional fabric को delegitimize करने का प्रयास कर रहे हैं। बात आज ये वर्दी को डिलेजिटिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, कल ये सुप्रीम कोर्ट को डिलेजिटिमाइज करने का प्रयास करेंगे और परसों ये किसी तीसरी संवैधानिक ढांचे को डिलेजिटिमाइज करने का प्रयास करेंगे। तो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति।
2: All right, so the BJP, they're hitting out at Rahul Gandhi in the Congress over this fake AI video. The Delhi police has revealed one of the videos showing the Delhi police, manhandling women journals was fake. And the BJP now using that to attack Rahul Gandhi, asking, why don't you reply? But let's return to the protests that are taking place in Delhi. While it started out with an opposition, united opposition there protesting and marching in the streets, now it is just the Congress party that is left protesting at the Akashvani Bhavan, where they're sitting on a dharna. These visuals from earlier when Rahul Gandhi climbed over the barricades, Abhishek Banerjee too climbed over the barricades protesting against the Chief Election Commissioner, demanding that he step down. Let's go across to Aishwarya for more on what is taking place right now. Aishwarya, take us through the details right now. It is a standoff and the Congress there, it seems, in for the long haul, sitting down on dharna.
4: Well, certainly at the Congress Working Committee, it was decided that the Congress will protest against the Election Commission, perhaps a day after it was an India Bloc meeting that was called, and unitedly by all the opposition MPs, it was decided that they will gather at Makar Dwar in the Parliament and they will march towards Election Commission of India. And this morning, what all started with at least 19 political parties taking participation in this protest, including leaders like Akhilesh Yadav to Derek O'Brien to Mahua Moitra to the top Congress leadership and the left parties. It was more than 300 MPs has been claimed by Rahul Gandhi himself, who marched towards the Election Commission of India, but they were stopped just after few meters going towards the Election Commission. There we saw some scuffle between the opposition MPs and the Delhi police. There was heavy security that was deployed because there was no permission that was given to them. Perhaps soon after that, it was Rahul Gandhi who was earlier detained, stopped the bus, and he entered the Akashvani Bhavan, which is just 300 meters away from the Election Commission of India. Perhaps just behind me are the visuals of Akashvani Bhavan. At Akashvani Bhavan, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, along with senior Congress leadership, also staging a protest since morning, and they are adamant. What Rahul Gandhi has been saying constantly is that 300 MPs, who are the lawmakers of this country, if the representatives of crores of people are not being allowed to meet the CEC, what type of democracy we are living in? And that's something that Rahul Gandhi has been saying time and again since morning in different of his media bites, and he is adamant of staying over here and not leaving from this place until unless he gets an opportunity to meet the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. As the Congress and the entire India bloc is demanding the resignation, it is the Bharatiya Janata Party on the other side clearly countering Rahul Gandhi, stating that he is manipulating, he is not narrating the exact facts as far as the Form 6 is concerned, and it is Rahul Gandhi who has now become an intruder, intruded into Akashvani Bhavan, and that's what they have done in several of the years when the Congress Party was in power, including imposing emergency. So yes, there has been a face-off that was seen throughout the day, but as of now, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and other senior Congress leaders are protesting here at Akashvani Bhavan. Perhaps what started with 19 political parties, now it is Congress, which is still on the road.
2: All right, Aishwarya, thanks so much for joining us. And Vasudha also there outside the Akashvani Bhavan. Vasudha, you've also been, you know, tracking this march, this protest march, which started with 19 political parties. As Aishwarya was pointing out, now only the Congress there sitting on dharna. Congress party that, you know, first started this vote chori charge, now determined to see it through.
5: That is right, Gargi. In fact, I was talking to somebody who's inside, who's part of this delegation, this an unofficial, informal delegation that is sitting inside to meet Gyanesh Kumar. And they told me that police, cops have come and spoken to them at least three times. The deliberations are on and Rahul Gandhi does not want to, basically compromise on this. He wants to meet the Chief Election Commissioner of the country, the same guy that he wants to resign. He says that he wants that meeting to happen. Only then will he move from Akashvani Bhavan. This is also the National Broadcaster's office. So everybody, you know, till a long time ago was coming out and watching as to what is happening. Now that the, you know, chatais have come and tea has come, the refreshments are in, there is also a sense that Rahul Gandhi will want to prolong this because he wants this to be an impactful protest. He is believed in the fact that he has been raising vote chori for a long time. He has had almost 7 press conferences on that. But this is something that he wants to be impactful, which is why he wants to prolong it. And when you talk about the BJP's counter to this, they are countering the Congress party and the opposition on 3 counts. One, they're trying to tell people that the SIR exercise is completely constitutional, it is within legal terms, and that no court has ever suspended the SIR process. The second thing, they're accusing the Congress party of misinterpreting the court's observations and judgments and misleading the voters of the country. And third, other important thing is, you know, they're trying to tell people that it's the Congress party that's trying to spread anarchy in the country, and they are trying to mobilize people for the wrong reasons, while the Election Commission of India has already put its point clear. Now, there is a lot of commotion inside. Congress, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, all of them, I mean, they're sitting and, you know, having, you know, conversations on the next move forward. But according to people in the know of the matter, the key word here is prolong. They want to prolong this so that the impact of this gets optimized.
2: All right, Vasudha, thanks so much for joining us, and NDTV's reporters on the ground getting you all those developments. Aishwarya, Vasudha and Ankit Tyagi, who is somewhere there, you know, perched on top of the wall, getting you all the developments as the Congress is determined to prolong this protest. For the moment, we'll slip into a short break. More news and updates on the other side.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डूड,
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: Welcome back, ladies and gentlemen. We're coming to you live from the national capital, the heart of the national capital, near Sansad Marg, where the Akash Vani Bhavan is. And this has become the battleground, the political battleground today. This pillar has been my post for the last 7 hours. This is the 8th hour of the protest that Rahul Gandhi is on. And as the protest continued through the day, not one, not two, but three press conferences of the Bharatiya Janata Party to try and counter the messaging that was going on from here. Let's listen in to some reactions.
1: यहाँ से मुश्किल 100 मीटर होगा चुनाव आयोग और वहाँ नेता प्रतिपक्ष जाकर अपना एक ज्ञापन देना चाहें और उनको रोका जा रहा है और बड़ी बेदर्दी से सबको रोका जा रहा है. आपने देखा बाहर क्या हाल बना दिया. ये इस देश के लोकतंत्र की, देश की राजधानी में हालत है.
2: अब
1: इंतजार करें, हम तो इंतजार करें, हम तो बैठे हैं यहाँ जमीन पर. आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, राहुल जी दिख रहे हैं, प्रियंका जी दिख रहे हैं, सब यहाँ बैठे हैं. देखिए, ये जो एमपीज हैं, इंडिया अलायंस के एमपीज हैं, बीजेडी के लोग भी आए, ये लगभग 64% देश की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. तो आप मान लीजिए कि 64% देश आज सड़कों पर है, देश की राजधानी में, और उनको रोका जा रहा है और किस तरीके से रोका जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है.
3: मैं पूरे राहुल गांधी के इस आचरण की भर्त्सना करता हूं. वो एनआरकी चाहते हैं, कभी सेना प्रमुख को क्या क्या बोलते हैं, और आज जो उन्होंने बहुत ही बेशर्मी भरा आरोप लगाया प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर और मोहन भागवत जी पर, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं. राहुल गांधी अराजक हैं, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी इज एन आर्किस्ट एंड राहुल गांधी इज रिस्पॉन्सिबल. और देश की जनता आपके इस आचरण पर कभी आपको नहीं जिताएगी. आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं.
4: दे आर डूइंग ड्रामा, दिस थिएट्रिकल ड्रामा मस्ट स्टॉप. सिंस 2014 कांग्रेस पार्टी हैज फेल्ड टू ऑब्टेन द मैंडेट ऑफ द पीपल, देयर बाय देयर फ्रस्ट्रेशन इज ग्रोइंग एंड दे आर अटैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, दे आर अटैकिंग इलेक्शन कमीशन, दे आर अटैकिंग जुडिशियरी. This will not work.
5: हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं. पता नहीं क्यों 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं. 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं. बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है. इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है. 300 MPs ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं.
6: अरे, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, वोट को रिस्टोर करना, ये हमारा मकसद है.
7: बीजेपी कह रही है कि आप लोग चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.
6: हम नहीं कर रहे, वही लोग कर रहे हैं. उन्हीं के लोग तो बताएं कि वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ बदलाव हो रहा है, और वही लोग आपस में लड़ रहे हैं और सच्चाई बाहर आ रही है. तो हमारा नहीं, उनका है. तो ये मोदी का बीजेपी की चाल है कि सब कुछ अपने हाथ में लेकर इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहिए.
7: आगे क्या रणनीति रहेगी सर, आगे पुलिस ने
6: रणनीति? अरे, लड़ रहे थे, लड़ने के लिए तैयार.
8: सहयोगी दलों ने यह निर्णय लिया है कि भले ही अराजकता के माध्यम से राहुल गांधी को लॉन्च करना पड़े तो हम देश के लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे. इस प्रक्रिया में समय समय पर इंडियन आर्मी पर अटैक हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल पर अटैक हुआ, इसमें भारत के हिंदुओं पर भी अटैक हुआ, ईवीएम मशीन पर अटैक हुआ, और अभी कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है. और हमें लगता है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं.
0: The action continues here outside the Akashvani Bhavan. We'll get into the latest details here from the very spot, which has now become, ladies and gentlemen, the latest confrontation between the government and the leader of opposition. Quick break. I'm coming back. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
2: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
3: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
9: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
0: Rang rang rang rang rang rangine rang rangine re dekho kaise bhi ho tin rang bana rahe
1: bojhe paints rang bana rahe।
9: Our pure shahi paneer masala, delicious, healthy, everyday।

0: एंड सेनको सपोर्ट एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
1: एक परिवार अटूट भरोसा।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
6: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बजे पेंट्स रंग बना रहे।
2: A verdict can change a business. A law can reshape an industry. A regulation can create an opportunity or a risk. Because what happens in courts could have a direct impact

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: diplomatic leaders. And industry icons unite at the NDTV World India-Japan Summit, from friendship to future, as we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे
2: बोझे पेंट्स रंग बना रहे
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात
4: वाओ मामा क्या स्वाद है
5: अरे मेरे राजा
6: सबका राजा आर्टियोर मसाला
7: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए एनी सजेशंस जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन Small.
8: अब पूरी पिक्चर देख लो लोन ऑप्शंस बिग सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग ब्रांच नेटवर्क बिग अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता और जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाहिए कि उनसे इस्तीफा मांग ले, क्योंकि अब वो अर्बन नक्सल की पूरी भूमिका में आ गए। एलओपी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं, भ्रम फैलाना उनका मकसद हो गया है, अराजकता फैलाना उनका मकसद हो गया है।
1: Not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us. They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us.
2: अभी तो शुरुआत है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता पछताएगा कि आज मिला क्यों नहीं। आप लिख रख लीजिए। छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द कर दिया ना उसने कल का। आगे देखिए क्या क्या रद्द होता है।
3: उन्होंने छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार था प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, धक्के मारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। हम कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है, हम इस देश के निवासी हैं, चुनकर आए हैं, हम मांग अपनी डिमांड को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गुनाह क्या है। और व्यवहार जो पुलिस साथ था वो ऐसे था जैसे किसी गैंगस्टर और क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है।
4: Well, another big story that made headlines in the national capital today was about how Delhi police arrested a 24-year-old man for allegedly creating and circulating an AI-generated video targeting the Delhi ACP Vivek Bhagat. The accused, identified as Nadeem Ahmed, was allegedly operating a social media handle called News Aina. Police now say that the video was designed to make it appear that ACP Vivek Bhagat was misbehaving with a woman protester, but the video was fake. The Delhi Police cyber team traced the content to Nadeem Ahmed, who police say admitted to creating the fake reel and posters using AI tools. Police allege that the content was created on October 3rd and was circulated the following day. Now investigators are probing a larger question: was this work of one individual, or was there a wider network behind the creation, funding, and even circulation of the fake content?
5: हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट है, उसने देखा कि एक सीसी फुटेज चलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट साइट का है वहाँ का है ये सीसी फुटेज, और इसमें दिखाया गया है जो हमारा पुलिस अधिकारी को एक महिला के साथ गलत व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, और उसमें उसका नाम भी बताया गया है। तब अब जब इसकी हमने वीडियो की जाँच की तो पता चला इसके पीछे न्यूज़ एंगल है एक नदीम अहमद करके, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। वो पलोल हरियाणा का रहने वाला था, और तुरंत हमारी टीम ने उसको लोकेट किया और उसको अरेस्ट किया, और उसी अब प्रारंभिक जांच चल रही है। उसने शुरुआत के बयान में बताया है कि उसका वो एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम करता है।
6: नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसकी तस्वीर आप सब ने देखी होगी, उस नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर ने एक फेक AI वीडियो को जनरेट किया, और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस सेवा दल, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, तमाम ये पूरे के पूरा इकोसिस्टम स्ट्रीट एनार्की का समर्थन करते हुए एक झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। दे अटेम्प्टेड टू स्प्रेड अ फेक नैरेटिव, जो झूठ आज पकड़ा गया। उस झूठ पर राहुल गांधी कंप्लीटली खामोश है।
4: Now the showdown over SIR is not just limited to the national capital. Karnataka government is alleging that a coordinated attempt to misuse Form 7 during the voter roll revision is taking place. Karnataka government has alleged that pre-printed forms were used to target genuine voters. The Karnataka Home Minister Priyank Kharge has made a sharper allegation that living voters were being declared dead through Form 7 applications. NDA delegation comprising of Union Ministers H.D. Kumaraswamy and Shobha Karandlaje, Leader of Opposition R. Ashoka and others met the Karnataka governor and summited a memorandum over cases filed against the BJP workers. BJP has rejected the allegations and accused the Congress government of targeting its workers. And now, the Karnataka CEO has clarified the key point that no voter has been deleted merely because of a Form 7 objection.
7: I could convey only one thing to the voters of Karnataka. Just because of objections filed, no name has been so far deleted from the voter roll. It will be enquired by the concerned EROs and necessary action will be taken. To delete any name from the draft roll, the ERO has to issue notice for hearing. He has to call both the objector and the voter for hearing. He has to verify the document.

0: राहुल गांधी को अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाहिए कि उनसे इस्तीफा मांग ले, क्योंकि अब वो अर्बन नक्सल की पूरी भूमिका में आ गए। एलओपी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं, भरम फैलाना उनका मकसद हो गया है, अराजकता फैलाना उनका मकसद हो गया है।
1: They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us. They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us.
2: अभी तो शुरुआत है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता पछताएगा कि आज मिला क्यों नहीं। आप लिख कर लिख रख लीजिए, छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द कर दिया ना उसने कल का, आगे आगे देखिए क्या क्या रद्द होता है।
3: उन्होंने छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार था प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ धक्के मारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, हम कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है, हम इस देश के निवासी हैं, चुनकर आए हैं, हम मांग अपनी डिमांड को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गुनाह क्या है। और व्यवहार जो पुलिस साथ था वो ऐसे था जैसे किसी गैंगस्टर और क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है।
4: Well, another big story that made headlines in the national capital today was about how Delhi police arrested a 24-year-old man for allegedly creating and circulating an AI-generated video targeting the Delhi ACP Vivek Bhagat. The accused, identified as Nadeem Ahmed, was allegedly operating a social media handle called News Aina. Police now say that the video was designed to make it appear that ACP Vivek Bhagat was misbehaving with a woman protester. But the video was fake. The Delhi Police cyber team traced the content to Nadeem Ahmed, who police say admitted to creating the fake reel and posters using AI tools. Police allege that the content was created on October 3rd and was circulated the following day. Now, investigators are probing a larger question. Was this work of one individual or was there a wider network behind the creation, funding and even circulation of the fake content?
5: हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट है, उसने देखा कि एक सीसी फुटेज चलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट साइट का है वहाँ का है ये सीसी फुटेज, और इसमें दिखाया गया है जो हमारा पुलिस अधिकारी को एक महिला के साथ गलत व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, और उसमें उसका नाम भी बताया गया है। तब अब जब इसकी हमने वीडियो की जाँच की तो पता चला इसके पीछे न्यूज एंगल है, एक नदीम अहमद करके, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। वो पलोल हरियाणा का रहने वाला था और तुरंत हमारी टीम ने उसको लोकेट किया और उसको अरेस्ट किया, और उसी अब प्रारंभिक जांच चल रही है। उसने शुरुआत के बयान में बताया है कि उसका वो एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम करता है।
6: नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसकी तस्वीर आप सबने देखी होगी, उस नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर ने एक फेक AI वीडियो को जनरेट किया, और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस सेवा दल, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, तमाम ये पूरे के पूरा इकोसिस्टम स्ट्रीट एनार्की का समर्थन करते हुए एक झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। दे अटेम्प्टेड टू स्प्रेड अ फेक नैरेटिव, जो झूठ आज पकड़ा गया। उस झूठ पर राहुल गांधी कंप्लीटली खामोश है।
4: Now the showdown over SIR is not just limited to the national capital. Karnataka government is alleging that a coordinated attempt to misuse Form 7 during the voter roll revision is taking place. Karnataka government has alleged that pre-printed forms were used to target genuine voters. The Karnataka Home Minister Priyank Kharge has made a sharper allegation that living voters were being declared dead through Form 7 applications. The NDA delegation comprising of Union Ministers H.D. Kumaraswamy and Shobha Karandlaje, Leader of Opposition R. Ashoka and others met the Karnataka governor and summited a memorandum over cases filed against the BJP workers. BJP has rejected the allegations and accused the Congress government of targeting its workers. And now, the Karnataka CEO has clarified the key point that no voter has been deleted merely because of a Form 7 objection.
7: I could convey only one thing to the voters of Karnataka. Just because of objections filed, no name has been so far deleted from the voter roll. It will be enquired by the concerned EROs and necessary action will be taken. To delete any name from the draft roll, the ERO has to issue notice for hearing.

0: उन्होंने छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार था प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, धक्के मारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, हम कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है, हम इस देश के निवासी हैं, चुनकर आए हैं, हम मांग अपनी डिमांड को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गुनाह क्या है। और व्यवहार जो पुलिस साथ था वो ऐसे था जैसे किसी गैंगस्टर और क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है।
1: Well, another big story that made headlines in the national capital today was about how Delhi police arrested a 24-year-old man for allegedly creating and circulating an AI-generated video targeting the Delhi ACP Vivek Bhagat. The accused, identified as Nadeem Ahmed, was allegedly operating a social media handle called News Aina. Police now say that the video was designed to make it appear that ACP Vivek Bhagat was misbehaving with a woman protester. But the video was fake. The Delhi Police cyber team traced the content to Nadeem Ahmed, who police say admitted to creating the fake reel and posters using AI tools. Police allege that the content was created on October 3rd and was circulated the following day. Now, investigators are probing a larger question. Was this work of one individual or was there a wider network behind the creation, funding and even circulation of the fake content?
2: हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट है, उसने देखा कि एक सीसी फुटेज चलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट साइट का है वहाँ का है ये सीसी फुटेज, और इसमें दिखाया गया है जो हमारा पुलिस अधिकारी को एक महिला के साथ गलत व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, और उसमें उसका नाम भी बताया गया है। तब अब जब इसकी हमने वीडियो की जाँच की तो पता चला इसके पीछे न्यूज़ एंगल है एक नदीम अहमद करके, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, वो पलोल हरियाणा का रहने वाला था, और तुरंत हमारी टीम ने उसको लोकेट किया और उसको अरेस्ट किया, और उसी अब प्रारंभिक जांच चल रही है। उसने शुरुआत के बयान में बताया है कि उसका वो एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम करता है।
3: नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसकी तस्वीर आप सबने देखी होगी, उस नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर ने एक फेक एआई वीडियो को जनरेट किया, और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस सेवा दल, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, तमाम ये पूरे के पूरा इकोसिस्टम स्ट्रीट एनार्की का समर्थन करते हुए एक झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। दे अटेम्प्टेड टू स्प्रेड अ फेक नैरेटिव, जो झूठ आज पकड़ा गया। उस झूठ पर राहुल गांधी कंप्लीटली खामोश है।
1: Now, the showdown over SIR is not just limited to the national capital. Karnataka government is alleging that a coordinated attempt to misuse Form 7 during the voter roll revision is taking place. Karnataka government has alleged that pre-printed forms were used to target genuine voters. The Karnataka Home Minister, Priyank Kharge, has made a sharper allegation that living voters were being declared dead through Form 7 applications. The NDA delegation comprising of Union Ministers H.D. Kumaraswamy and Shobha Karandalaje, leader of opposition R. Ashoka and others met the Karnataka governor and summited a memorandum over cases filed against the BJP workers. BJP has rejected the allegations and accused the Congress government of targeting its workers. And now, the Karnataka CEO has clarified the key point that no voter has been deleted merely because of a Form 7 objection.
4: I could convey only one thing to the voters of Karnataka. Just because of objections filed, no name has been so far deleted from the voter roll. It will be enquired by the concerned EROs and necessary action will be taken. To delete any name from the draft roll, the ERO has to issue notice for hearing. He has to call both the objector and the voter for hearing. He has to verify the documents. After, he can take decisions once he is convinced whether to delete or not to delete. So that is the procedure mentioned in the rules from section 16 to 20 of Registration of Electoral Rules 1960.
5: So not a single voter has been deleted up until now,
4: has been deleted so far.
6: All the opposition leaders, they have a right to ask this election commission and the president of India. Why our upper state leaders have gone to the Raj Bhavan? Because they are afraid. They did a conspiracy. They printed the Form 7. Then our workers have filing a complaint in the police station. Let they declare themselves that yes, we have given. The small workers in the constituency level, they were given. I also have a lot of friends.

0: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
1: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
0: Let's do it. Let's do it. Let's start.
2: Breaking story, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
3: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude,
3: we're standing on the...
4: Welcome, you're watching NDTV with me, Tanisha Awasthi. The big story, of course, has been the opposition protesting against the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. There have been protests, there have been detention, and we get you all the late night updates on that as well. But first, as always, the headlines. Opposition's big protest against CEC Gyanesh Kumar demand poll body chief's resignation. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and other opposition MPs were briefly detained after a long dharna outside Akashwani Bhavan. All opposition leaders, we now learn, have been let go from the police station. Air Marshal Ashutosh Dixit has been appointed new chief of the Indian Air Force, commissioned into fighter stream of the IAF in 1986. He has over 3,500 hours of flying experience. Air Marshal Dixit will be succeeding Air Chief Marshal AP Singh. Captain Smith's skull fractured in attack. Doctors performed reconstruction surgery after depressed fracture pushed fragment of skull nearer to his brain. Crucial bipole tests for TVK, AIA, DMK and the DMK in Madhurantakam and Dharapuram. Vote both constituencies record voter turnout of 85.99% and 80.31% respectively. Captaincy chapter closes for Harmanpreet Kaur. India's long-serving women's skipper stepped down as captain across all formats, paving the way for a new captain. The SIR showdown has escalated in Delhi, and this happened throughout the day, ladies and gentlemen. And this was with Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and several opposition leaders who were detained after their march towards the election commission was stopped by the police. Now, the opposition says that nearly 300 MPs wanted to meet CEC Gyanesh Kumar and that the two election commissioners and demanded an assurance that the meeting would happen within the next 1 or 2 days. The election commission, however, says that the request came only after 4 p.m., involved an unusually large 240-member delegation and departed from the established protocol. As Rahul Gandhi was detained after an hour-long sit-in, the BJP accused the Congress party of creating disruption and claimed that the Election Commission had exposed its own allegations. Meanwhile, what we also learn is that Rahul Gandhi, along with Priyanka Gandhi and the other opposition leaders who were detained, have now been let go of by the police. We have a couple of reactions coming in on the day-long protests and the detentions. Let's hear some of them.
5: मंच और नाटकीय प्रस्तुतिकरण के में माहिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो कुछ आज दिन भर ड्रामा किया, अभी जो तथ्य औपचारिक रूप से प्रेस रिलीज के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उससे उनका झूठ बेनकाब हो गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है, चुनाव आयोग से मिलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट इंडी गठबंधन अथवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो इतने प्रकार के प्रपंच और स्वांग कर चुके हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि उनको लॉन्च करने के निरंतर विफल प्रयास हो रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कई प्रकार के होते हैं, एक ASLV होता है जिसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, एक PSLV होता है जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, वैसे एक अब मुझे लगता है कांग्रेस को FSLV कह देना चाहिए, फेल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मगर इसके बाद भी वो अपनी बात से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैं पुनः कह देना चाहता हूं, आज साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी सरासर झूठ बोलती है।
6: राहुल गांधी को अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाहिए कि उनसे इस्तीफा मांग ले, क्योंकि अब वो अर्बन नक्सल की पूरी भूमिका में आ गए। LOP की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं, भ्रम फैलाना उनका मकसद हो गया है, अराजकता फैलाना उनका मकसद हो गया है।
7: They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us. They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us.
8: अभी तो शुरुआत है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता पछताएगा कि आज मिला क्यों नहीं। आप लिख कर लिख रख लीजिए, छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द कर दिया ना उसने कल का, आगे आगे देखिए क्या क्या रद्द होता है।
9: उन्होंने छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार था प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, धक्के मारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हम कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है, हम इस देश के निवासी हैं, चुनकर आए हैं, हम मांग अपनी डिमांड को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गुनाह क्या है। और व्यवहार जो पुलिस साथ था वो ऐसे था जैसे किसी गैंगस्टर और क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है।
4: Well, another big story that made headlines in the national capital today was about how Delhi police arrested a 24-year-old man for allegedly creating and circulating an AI-generated video targeting the Delhi ACP Vivek Bhagat. The accused, identified as Nadeem Ahmed, was allegedly operating a social media handle called News Aina. Police now say that the video was designed to make it appear that ACP Vivek Bhagat was misbehaving with a woman protester. But the video was fake. The Delhi Police cyber team traced the content to Nadeem Ahmed, who police say admitted to creating the fake reel and posters using AI tools. Police allege that the content was created on October 3rd and was circulated the following day. Now, investigators are probing a larger question. Was this work of one individual or was there a wider network behind the creation, funding and even circulation of the fake content?
10: हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट है, तो उसने देखा कि एक CC फुटेज चलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट साइट का है वहाँ का है ये CC फुटेज, और इसमें दिखाया गया है जो हमारा पुलिस अधिकारी को एक महिला के साथ गलत व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, और उसमें उसका नाम भी बताया गया है। तब अब जब इसकी हमने वीडियो की जाँच की तो पता चला इसके पीछे न्यूज़ एंगल है, एक नदीम अहमद करके, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। वो पलोल हरियाणा का रहने वाला था और तुरंत हमारी टीम ने उसको लोकेट किया और उसको अरेस्ट किया, और उसी अब प्रारंभिक जांच चल रही है। उसने शुरुआत के बयान में बताया है कि उसका वो एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम करता है।
11: नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसकी तस्वीर आप सबने देखी होगी, उस नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर ने एक फेक AI वीडियो को जनरेट किया, और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस सेवा दल, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, तमाम ये पूरे के पूरा इकोसिस्टम स्ट्रीट एनार्की का समर्थन करते हुए एक झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। दे अटेम्प्टेड टू स्प्रेड अ फेक नैरेटिव, जो झूठ आज पकड़ा गया। उस झूठ पर राहुल गांधी कंप्लीटली खामोश है।
4: Now, the showdown over SIR is not just limited to the national capital. Karnataka government is alleging that a coordinated attempt to misuse Form 7 during the voter roll revision is taking place. Karnataka government has alleged that pre-printed forms were used to target genuine voters. The Karnataka Home Minister, Priyank Kharge, has made a sharper allegation that living voters were being declared dead through Form 7 applications. NDA delegation comprising of Union Ministers H.D. Kumaraswamy and Shobha Karandalaje, Leader of Opposition R. Ashoka and others met the Karnataka government.